0: அந்த நிலாவை கையில் பிடித்த மகிழ்ச்சியோடு நிறைவுக்கு வருகிறது இன்றைய பவரி வரும் குமர் நிலா. இந்த நிகழ்ச்சியில் தங்களுடைய விருப்ப பாடல்களை கேட்டு மகிழ்ந்த நேர்களுக்கும் நிகழ்ச்சியை கேட்டிருந்த நேர்களுக்கும் நிலையத்தின் சார்பாக நன்றி. இன்றைய இந்த நேர்லை நிகழ்ச்சிக்கு தொழில்நுட்பம் ஏ லாரன்ஸ் மற்றும் உதயபானு. நிகழ்ச்சியில் இதுவரை உங்களோடு சுஜாதா பினுகுமார். மீண்டும் சந்திக்கலாம் நேர்களே, வணக்கம். இனி வருவது அகில பாரத இசை நிகழ்ச்சி. இதில் ஹரிகேஷ் ககுர்தே அவர்களின் வாய்ப்பாட்டு இடம்பெறும்.
1: सभी के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनते हैं ऋषिकेश गंगोरी जी का शास्त्रीय गायन.
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक विल ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गंगोरी.
1: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गंगोरी से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई. इसके पश्चात उन्होंने डॉ विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा. इसके बाद ऋषिकेश जी ने आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सान्निध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया. उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ.
2: बॉर्न इंटू अ म्यूजिक लविंग फैमिली इन पुणे, ऋषिकेश वॉज इनिशिएटेड इंटू वोकल म्यूजिक एट द टेंडर एज ऑफ 5 बाय हिज फादर श्री पुरुषोत्तम गंगोरी. He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
1: ऋषिकेश गंगोरी आकाशवाणी के ए श्रेणी के गायक कलाकार है. उनकी गायकी में संगीत का सौंदर्य, भव्यता और माधुर्य झलकता है जो सीधे श्रोताओं के मन को छू लेता है और यही उनके गायकी की विशेषता है. गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी है और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशालकर के साथ तबले पर संगत की है. वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है.
2: ऋषिकेश गंगोरी

0: is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru, Pandit Ullas Kashalkar, in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapit, Pune.
1: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगड़े जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर. अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से. विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है. बोल है प्यारी पग होले होले. इसके पश्चात वे तीन ताल में ही दो द्रुत बंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी.
0: In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Shri Ashay Kulkarni and on the harmonium by Shri Makaranda Kharavandikar. Rishikesh begins his vocal recital with Raag Bihagada. The Vilambit composition is set to Teen Taal. This will be followed by Druta compositions in Teen Taal.

0: ये था राग बिहागड़ा।
1: दैट वॉज राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेशी से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन तीन ताल।

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: दैट वॉज राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुली जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम

0: आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिसनिंग टू अ क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुर्डे इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune and this program was broadcast from Akashwani Delhi.